0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, 24 जून को वेनेजुएला के उत्तर मध्य क्षेत्र में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए थे। दोनों भूकंपों के बीच केवल 39 सेकंड का अंतर था। प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान अब भी जारी है। 28 देशों की कम से कम 51 अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं बचाव टीमें अब भी सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में तैनात हैं, जिनमें 2,276 विशेषज्ञ और 165 खोजी कुत्ते शामिल हैं।

0: वेनेजुएला सरकार ने 7 दिन के अंतर्राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार अब तक भूकंपों में कम से कम 2,295 लोगों की मौत हुई है और 11,256 लोग घायल हुए हैं। अब तक लगभग 6,400 लोगों को बचाया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया कि वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद 18 लाख लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है, जिनमें लगभग 6,80,000 बच्चे हैं। उत्तरी वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंपों के बाद ला गुएरा के अस्पताल मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण भारी दबाव में हैं। वहीं आश्रय स्थलों में बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: वेनेजुएला के उत्तरी हिस्से में 25 जून को आए विनाशकारी भूकंपों के एक सप्ताह बाद सर्वाधिक प्रभावित ला गुएरा प्रांत के अस्पतालों पर मरीजों का भारी दबाव है। अस्थायी आश्रय स्थलों में भी संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित पैन अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन पाहो ने ला गुएरा, कराकस और मिरांडा में 8 स्वास्थ्य केंद्रों का आकलन किया है। इन सभी केंद्रों को तत्काल बाहरी सहायता की आवश्यकता है, जबकि 3 को ढांचागत नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे हैं कि ला गुएरा के एक अस्पताल में 8 बिस्तरों के लिए बनाए गए वार्ड में 96 मरीजों को रखा जा रहा है। बिजली की कमी के कारण ट्रॉमा इकाई के वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं और पानी भी कनस्तरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और पाहो ने दवाएं, ट्रॉमा किट और अन्य जीवन रक्षक सामग्री पहुंचाई है, मगर यूएन एजेंसियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने और बीमारी फैलने से रोकने के लिए और अधिक सहायता की तत्काल आवश्यकता है।
0: संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन में जुलाई महीने में अब तक हर दिन औसतन 170 नागरिक मारे गए या घायल हुए हैं। नागरिक हताहतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सोमवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई रूसी हमलों में कम से कम 18 नागरिकों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। मिसाइल और ड्रोन हमलों में बहुमंजिला रिहायशी इमारतों और अन्य नागरिक ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा। ये हमले कीव में हुए एक अन्य रूसी हमले के केवल 4 दिन बाद हुए, जिसमें कम से कम 30 नागरिकों की मौत हुई। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: यूक्रेन में गुरुवार को रूसी हमलों में तेज बढ़ोतरी के बाद संयुक्त राष्ट्र और उसकी साझेदार एजेंसियां प्रभावित लोगों तक आपात सहायता पहुंचाने में जुटी हैं। राजधानी कीव पर हुआ हमला अब तक के सबसे भीषण हमलों में से एक बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है और करीब 90 लोग घायल हुए हैं। घायलों में अनेक बच्चे भी शामिल हैं। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है और ध्वस्त इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। कीव के अनेक निवासियों को लगभग 11 घंटे तक बम आश्रय स्थलों या अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर छिपकर रहना पड़ा। एक एम्बुलेंस केंद्र पर हुए हमले में स्वास्थ्य कर्मी और चालक भी घायल हुए हैं। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी मैथियास शमाले ने हमलों की निंदा करते हुए कहा, हम एक बालवाड़ी के पास से गुजरे जहां बच्चों को पढ़ना और सुरक्षित महसूस करना चाहिए, मगर घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पूरा सम्मान होना चाहिए और सभी आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये बेवजह की हत्याएं और विनाश अब रुकना चाहिए। ये थे संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी मैथियास शमाले के शब्द। यूएन एजेंसियां प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार, अस्थायी आश्रय, नकद सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की अपील दोहराई है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने गुरुवार को वैश्विक स्वास्थ्य संकटों पर नवीनतम जानकारी साझा करते हुए बताया कि हंटा वायरस का प्रकोप आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। 25 मई के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि अफ्रीका में इबोला का प्रसार बढ़ रहा है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में जारी इबोला के संक्रमण फैलाव यानी प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेसस ने कहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य खतरों से कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता। विश्व स्वास्थ्य संकटों पर नवीनतम जानकारी साझा करते हुए उन्होंने हंटा वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की। हालांकि अफ्रीका में इबोला का प्रसार अब भी जारी है। हंटा वायरस प्रकोप पर डॉक्टर टेड्रोस कह रहे हैं कि इस प्रकोप में कुल 13 मामले सामने आए जिनमें 3 लोगों की मौत हुई। 33 देशों और क्षेत्रों में संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 650 से अधिक लोगों की पहचान की गई और स्वास्थ्य अधिकारियों ने उनकी निगरानी की। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेसस के शब्द। वहीं लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में इबोला के 1400 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है और 438 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच और उपचार क्षमता बढ़ाई जा रही है मगर अविश्वास और हिंसा अब भी राहत प्रयासों में बड़ी बाधा बने हुए हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल ने बुधवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के अवसरों, जोखिमों और प्रभावों पर पहला वैश्विक वैज्ञानिक आकलन जारी किया। रिपोर्ट में 7 प्रमुख क्षेत्रों का आकलन किया गया है। AI, विज्ञान, उसकी प्रगति और भविष्य की दिशा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में AI का उपयोग, आर्थिक प्रभाव, सुरक्षा तकनीकी प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रभाव, मानवाधिकार, सूचना और लोकतंत्र, सांस्कृतिक लाभ, व्यक्तिगत स्वायत्तता और बच्चों की सुरक्षा, प्रबंध, शासन और विश्वसनीयता। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
1: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के अवसरों, जोखिमों और प्रभावों पर पहला वैश्विक वैज्ञानिक आकलन जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AI स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जलवायु कार्रवाई में तेज प्रगति का माध्यम बन सकती है मगर इसके साथ साइबर हमलों, दुष्प्रचार, रोजगार में व्यवधान, बढ़ती असमानता और अत्यधिक स्वायत्त प्रणालियों पर नियंत्रण से जुड़े गंभीर जोखिम भी हैं। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सरकारों से कार्रवाई में देरी नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तथ्य अब सामने हैं और साझा नियमों के बिना AI के भविष्य को आकार देने में सरकारों और आम लोगों की भूमिका लगातार कम होती जाएगी। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग हर सप्ताह संवादात्मक AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि AI अपने आप असमानताएं दूर नहीं करेगी, इसके सुरक्षित, समान और जिम्मेदार उपयोग के लिए मजबूत वैश्विक शासन और निवेश जरूरी हैं।
0: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कास्टेल गंडोल्फो स्थित उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र की पहल, जो 11 जुलाई को बोर्गो लाउदातो सी में रोम धर्म प्रांत द्वारा मदद किए गए 200 कमजोर लोगों की मेजबानी करेगी, जिसमें 35 बच्चे भी शामिल हैं। इसका मकसद एक खुली कलीसिया, एक परिवार, सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना है। उम्मीद, स्वागत, सबको शामिल करना, ये वो इच्छाएं हैं जो लंच विद द पोप पहल के आयोजक को प्रेरित किया है, जो 11 जुलाई को कास्टेल गंडोल्फो के उद्यान में होगा। 200 जरूरतमंद लोग रोम धर्म प्रांत और उससे जुड़े संगठनों के साथ एक शानदार जगह पर सुंदरता और आध्यात्मिकता में डूबे हुए पूरा दिन बिताएंगे। यह शानदार जगह, जो 400 सालों से दुनिया के लिए बंद थी, इसे संत पापा फ्रांसिस ने खोला और अब संत पापा लियो 14वें ने इसे जारी रखा है। उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र के संचार समन्वयक डोनातेल्ला पेरिसी ने जोर देकर कहा, सुबह का मिस्सा समारोह उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र के महासचिव कार्डिनल फाबियो करेंगे। मिस्सा के बाद इन मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट और बोर्गो लाउदातो सी के स्टाफ के नेतृत्व में उद्यान दर्शन का इंतजाम किया जाएगा। बोर्गो लाउदातो सी उद्यान हमें रोम के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है। जहां डोमिजियानो विल्ला के खंडहर हैं, उन परमाध्यक्षों का इतिहास जो 16वीं शताब्दी से यहां आराम करने और फिर 300 अलग अलग प्रजातियों के 4000 से ज्यादा पौधों वाले उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता में डूबने के लिए आते रहे हैं, यह शान और मेलजोल का खजाना है और हमारे दरवाजे खोलता है। उन्होंने कहा कि कलीसिया को सभी के लिए और ज्यादा खुला होना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो हाशिए पर जी रहे हैं। हमारी योजना यह है कि हर साल इस कार्यक्रम में अलग अलग धर्म प्रांत के लोगों का स्वागत किया जाएगा। पिछले साल अल्बानो धर्म प्रांत था, इस साल रोम धर्म प्रांत है। यहाँ शरणार्थी, बच्चों के साथ एकल माताएं और वे लोग होंगे जिन्होंने बोर्गो में नौकरी पाने हेतु अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। वे सभी संत पापा के साथ जश्न मनाने के लिए वापस लौट रहे हैं। उधर बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद रावलपिंडी धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जोसेफ अरशाद ने इस बात पर जोर दिया और पाकिस्तान में समाज में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई। महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने पोंटिफिकल न्यूज एजेंसी फिदेस को बताया कि पाकिस्तान में बच्चों के यौन शोषण का मुद्दा अभी भी बहुत फैला हुआ है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तानी एनजीओ साहिल की एक रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए, जो रोजाना देश भर में बच्चों के साथ गलत व्यवहार पर नजर रखता है, महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने कहा कि 2025 में रिपोर्ट किए गए मामलों में 8% की खतरनाक बढ़ोतरी हुई है, जिसमें हिंसा के 3630 पुष्टिकृत मामले थे, यानी हर दिन औसतन 9 से ज्यादा बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपहरण और बलात्कार सबसे आम अपराध थे। 53% पीड़ित लड़कियां थीं। महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध इंसानी गरिमा का सबसे शर्मनाक और बर्दाश्त न होने वाला उल्लंघन है। सबसे ऊंचे नैतिक, सामाजिक, कानूनी और संस्थागत जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, कोई भी समाज खुद को न्यायप्रिय, शांतिपूर्ण और सभ्य नहीं कह सकता जब तक उसके बच्चे खतरे, डर और असुरक्षा में जीते हैं, क्योंकि वे ईश्वर का दिया हुआ एक पवित्र तोहफा हैं और उन्हें सबसे ऊंचे नैतिक, सामाजिक, कानूनी और संस्थागत जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने माता पिताओं, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं, मीडिया, नागर समाज और सभी नागरिकों से बच्चों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानने की अपील की। उधर कोणार्क का पोर्ट शहर और बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान के खिलाफ हमलों के नए ठिकाने बन गए हैं। कल हुए जबरदस्त क्रॉस फायर में कम 14 ईरानी मारे गए। अमेरिका इन नए हमलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का मानना है कि ये अचानक नहीं हुए, क्योंकि ये हमले पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को दफनाने के समय हुए, जो 28 फरवरी को अमेरिका के साथ लड़ाई की शुरुआत में मारे गए थे। तेहरान ने पक्का विरोध करने का वादा किया है, खासकर उस मुद्दे पर जो दोनों पक्षों के बीच खींचतान के केंद्र में है। दक्षिण सूडान के नॉर्थ वेस्ट इलाके के वारप स्टेट में गुरुवार को हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 25 हो गई है और 20 घायल हो गए हैं। हथियारबंद लड़ाकों ने एक लोकल पुलिस स्टेशन पर हमला किया और बाद में 200 से ज्यादा मवेशी चुरा लिए। वारप के सूचना मंत्री ने बताया कि मरने वालों में स्थानीय पुलिस स्टेशन के कमांडर कर्नल अकोल के साथ साथ सुरक्षा बल के सदस्य और आम लोग भी शामिल थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, 24 जून को वेनेजुएला के उत्तर मध्य क्षेत्र में 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप आए थे। दोनों भूकंपों के बीच केवल 39 सेकंड का अंतर था। प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान अब भी जारी है। 28 देशों की कम से कम 51 अंतर्राष्ट्रीय खोज एवं बचाव टीमें अब भी सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में तैनात हैं, जिनमें 2,276 विशेषज्ञ और 165 खोजी कुत्ते शामिल हैं। वेनेजुएला सरकार ने 7 दिन के अंतर्राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार अब तक भूकंपों में कम से कम 2,295 लोगों की मौत हुई है और 11,256 लोग घायल हुए हैं। अब तक लगभग 6,400 लोगों को बचाया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया कि वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद 18 लाख लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है, जिनमें लगभग 6,80,000 बच्चे हैं। उत्तरी वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंपों के बाद ला गुएरा के अस्पताल मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण भारी दबाव में हैं। वहीं आश्रय स्थलों में बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: वेनेजुएला के उत्तरी हिस्से में 25 जून को आए विनाशकारी भूकंपों के एक सप्ताह बाद सर्वाधिक प्रभावित ला गुएरा प्रांत के अस्पतालों पर मरीजों का भारी दबाव है। अस्थायी आश्रय स्थलों में भी संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित पैन अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन पाहो ने ला गुएरा, कराकस और मिरांडा में 8 स्वास्थ्य केंद्रों का आकलन किया है। इन सभी केंद्रों को तत्काल बाहरी सहायता की आवश्यकता है, जबकि 3 को ढांचागत नुकसान पहुंचा है। हालात ऐसे हैं कि ला गुएरा के एक अस्पताल में 8 बिस्तरों के लिए बनाए गए वार्ड में 96 मरीजों को रखा जा रहा है। बिजली की कमी के कारण ट्रॉमा इकाई के वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं और पानी भी कनस्तरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और पाहो ने दवाएं, ट्रॉमा किट और अन्य जीवन रक्षक सामग्री पहुंचाई है, मगर यूएन एजेंसियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने और बीमारी फैलने से रोकने के लिए और अधिक सहायता की तत्काल आवश्यकता है।
2: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन में जुलाई महीने में अब तक हर दिन औसतन 170 नागरिक मारे गए या घायल हुए हैं। नागरिक हताहतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सोमवार रात यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई रूसी हमलों में कम से कम 18 नागरिकों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। मिसाइल और ड्रोन हमलों में बहुमंजिला रिहायशी इमारतों और अन्य नागरिक ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा। ये हमले कीव में हुए एक अन्य रूसी हमले के केवल 4 दिन बाद हुए, जिसमें कम से कम 30 नागरिकों की मौत हुई। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: यूक्रेन में गुरुवार को रूसी हमलों में तेज बढ़ोतरी के बाद संयुक्त राष्ट्र और उसकी साझेदार एजेंसियां प्रभावित लोगों तक आपात सहायता पहुंचाने में जुटी हैं। राजधानी कीव पर हुआ हमला अब तक के सबसे भीषण हमलों में से एक बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है और करीब 90 लोग घायल हुए हैं। घायलों में अनेक बच्चे भी शामिल हैं। रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है और ध्वस्त इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। कीव के अनेक निवासियों को लगभग 11 घंटे तक बम आश्रय स्थलों या अपने घरों में सुरक्षित स्थानों पर छिपकर रहना पड़ा। एक एम्बुलेंस केंद्र पर हुए हमले में स्वास्थ्य कर्मी और चालक भी घायल हुए हैं। यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी मैथियास शमाले ने हमलों की निंदा करते हुए कहा, हम एक बालवाड़ी के पास से गुजरे जहां बच्चों को पढ़ना और सुरक्षित महसूस करना चाहिए, मगर घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पूरा सम्मान होना चाहिए और सभी आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये बेवजह की हत्याएं और विनाश अब रुकना चाहिए। ये थे संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय सहायता अधिकारी मैथियास शमाले के शब्द। यूएन एजेंसियां प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार, अस्थायी आश्रय, नकद सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने भी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए पूर्ण, तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम की अपील दोहराई है।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने गुरुवार को वैश्विक स्वास्थ्य संकटों पर नवीनतम जानकारी साझा करते हुए बताया कि हंटा वायरस का प्रकोप आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है। 25 मई के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि अफ्रीका में इबोला का प्रसार बढ़ रहा है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में जारी इबोला के संक्रमण फैलाव यानी प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेसस ने कहा है कि वैश्विक स्वास्थ्य खतरों से कोई भी देश अकेले नहीं निपट सकता। विश्व स्वास्थ्य संकटों पर नवीनतम जानकारी साझा करते हुए उन्होंने हंटा वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की। हालांकि अफ्रीका में इबोला का प्रसार अब भी जारी है। हंटा वायरस प्रकोप पर डॉक्टर टेड्रोस कह रहे हैं कि इस प्रकोप में कुल 13 मामले सामने आए, जिनमें 3 लोगों की मौत हुई। 33 देशों और क्षेत्रों में संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 650 से अधिक लोगों की पहचान की गई और स्वास्थ्य अधिकारियों ने उनकी निगरानी की। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेसस के शब्द। वहीं लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में इबोला के 1400 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है और 438 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच और उपचार क्षमता बढ़ाई जा रही है, मगर अविश्वास और हिंसा अब भी राहत प्रयासों में बड़ी बाधा बने हुए हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल ने बुधवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के अवसरों, जोखिमों और प्रभावों पर पहला वैश्विक वैज्ञानिक आकलन जारी किया। रिपोर्ट में 7 प्रमुख क्षेत्रों का आकलन किया गया है। AI, विज्ञान, उसकी प्रगति और भविष्य की दिशा, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में AI का उपयोग, आर्थिक प्रभाव, सुरक्षा तकनीकी प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रभाव, मानवाधिकार, सूचना और लोकतंत्र, सांस्कृतिक लाभ, व्यक्तिगत स्वायत्तता और बच्चों की सुरक्षा, प्रबंध, शासन और विश्वसनीयता। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के अवसरों, जोखिमों और प्रभावों पर पहला वैश्विक वैज्ञानिक आकलन जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AI स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जलवायु कार्रवाई में तेज प्रगति का माध्यम बन सकती है, मगर इसके साथ साइबर हमलों, दुष्प्रचार, रोजगार में व्यवधान, बढ़ती असमानता और अत्यधिक स्वायत्त प्रणालियों पर नियंत्रण से जुड़े गंभीर जोखिम भी हैं। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने सरकारों से कार्रवाई में देरी नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तथ्य अब सामने हैं और साझा नियमों के बिना AI के भविष्य को आकार देने में सरकारों और आम लोगों की भूमिका लगातार कम होती जाएगी। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग हर सप्ताह संवादात्मक AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि AI अपने आप असमानताएं दूर नहीं करेगी, इसके सुरक्षित, समान और जिम्मेदार उपयोग के लिए मजबूत वैश्विक शासन और निवेश जरूरी हैं।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कास्टेल गंडोल्फो स्थित उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र की पहल, जो 11 जुलाई को बोर्गो लाउदातो सी में रोम धर्म प्रांत द्वारा मदद किए गए 200 कमजोर लोगों की मेजबानी करेगी, जिसमें 35 बच्चे भी शामिल हैं। इसका मकसद एक खुली कलीसिया, एक परिवार, सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाना है। उम्मीद, स्वागत, सबको शामिल करना, ये वो इच्छाएं हैं जो लंच विद द पोप पहल के आयोजक को प्रेरित किया है, जो 11 जुलाई को कास्टेल गंडोल्फो के उद्यान में होगा। 200 जरूरतमंद लोग रोम धर्म प्रांत और उससे जुड़े संगठनों के साथ एक शानदार जगह पर सुंदरता और आध्यात्मिकता में डूबे हुए पूरा दिन बिताएंगे। यह शानदार जगह, जो 400 सालों से दुनिया के लिए बंद थी, इसे संत पापा फ्रांसिस ने खोला और अब संत पापा लियो 14वें ने इसे जारी रखा है। उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र के संचार समन्वयक दोनातेल्ला पेरिसी ने जोर देकर कहा, सुबह का मिस्सा समारोह उच्च शिक्षा के लिए लाउदातो सी केंद्र के महासचिव कार्डिनल फाबियो करेंगे। मिस्सा के बाद इन मेहमानों के लिए रिफ्रेशमेंट और बोर्गो लाउदातो सी के स्टाफ के नेतृत्व में उद्यान दर्शन का इंतजाम किया जाएगा। बोर्गो लाउदातो सी उद्यान हमें रोम के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है। जहां डोमिजियानो विल्ला के खंडहर हैं, उन परमाध्यक्षों का इतिहास जो 16वीं शताब्दी से यहां आराम करने और फिर 300 अलग अलग प्रजातियों के 4000 से ज्यादा पौधों वाले उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता में डूबने के लिए आते रहे हैं, यह शान और मेलजोल का खजाना है और हमारे दरवाजे खोलता है। उन्होंने कहा कि कलीसिया को सभी के लिए और ज्यादा खुला होना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो हाशिए पर जी रहे हैं। हमारी योजना यह है कि हर साल इस कार्यक्रम में अलग अलग धर्म प्रांत के लोगों का स्वागत किया जाएगा। पिछले साल अल्बानो धर्म प्रांत था, इस साल रोम धर्म प्रांत है। यहाँ शरणार्थी, बच्चों के साथ एकल माताएं और वे लोग होंगे जिन्होंने बोर्गो में नौकरी पाने हेतु अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। वे सभी संत पापा के साथ जश्न मनाने के लिए वापस लौट रहे हैं। उधर बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद रावलपिंडी धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष जोसेफ अरशाद ने इस बात पर जोर दिया और पाकिस्तान में समाज में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जताई। महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने पोंटिफिकल न्यूज एजेंसी फिदेस को बताया कि पाकिस्तान में बच्चों के यौन शोषण का मुद्दा अभी भी बहुत फैला हुआ है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। पाकिस्तानी एनजीओ साहिल की एक रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए, जो रोजाना देश भर में बच्चों के साथ गलत व्यवहार पर नजर रखता है, महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने कहा कि

0: 2025 में रिपोर्ट किए गए मामलों में 8% की खतरनाक बढ़ोतरी हुई है, जिसमें हिंसा के 3,630 पुष्टिकृत मामले थे, यानी हर दिन औसतन 9 से ज्यादा बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपहरण और बलात्कार सबसे आम अपराध थे। 53% पीड़ित लड़कियां थीं। महाधर्माध्यक्ष अरशाद ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध इंसानी गरिमा का सबसे शर्मनाक और बर्दाश्त न होने वाला उल्लंघन है। सबसे ऊंचे नैतिक, सामाजिक, कानूनी और संस्थागत जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, कोई भी समाज खुद को न्यायप्रिय, शांतिपूर्ण और सभ्य नहीं कह सकता जब तक उसके बच्चे खतरे, डर और असुरक्षा में जीते हैं, क्योंकि वे ईश्वर का दिया हुआ एक पवित्र तोहफा हैं और उन्हें सबसे ऊंचे नैतिक, सामाजिक, कानूनी और संस्थागत जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने माता पिताओं, शिक्षकों, धार्मिक नेताओं, मीडिया, नागर समाज और सभी नागरिकों से बच्चों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानने की अपील की। उधर कोणार्क का पोर्ट शहर और बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान के खिलाफ हमलों के नए ठिकाने बन गए हैं। कल हुई जबरदस्त क्रॉस फायर में कम से कम 14 ईरानी मारे गए। अमेरिका इन नए हमलों की जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों का मानना है कि ये अचानक नहीं हुए, क्योंकि ये हमले पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को दफनाने के समय हुए, जो 28 फरवरी को अमेरिका के साथ लड़ाई की शुरुआत में मारे गए थे। तेहरान ने पक्का विरोध करने का वादा किया है, खासकर उस मुद्दे पर जो दोनों पक्षों के बीच खींचतान के केंद्र में है। दक्षिण सूडान के नॉर्थ वेस्ट इलाके के वारप स्टेट में गुरुवार को हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 25 हो गई है और 20 घायल हो गए हैं। हथियारबंद लड़ाकों ने एक लोकल पुलिस स्टेशन पर हमला किया और बाद में 200 से ज्यादा मवेशी चुरा लिए। वारप के सूचना मंत्री ने बताया कि मरने वालों में स्थानीय पुलिस स्टेशन के कमांडर कर्नल अकोल के साथ साथ सुरक्षा बल के सदस्य और आम लोग भी शामिल थे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpetro.va पर जरूर जाएं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र

0: मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काफी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानवीय जीवन का हर कार्य, चाहे वह हमारे छोटे कार्यों में ही क्यों न हो, अपने में सदैव प्रभावशाली होता है। हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें, चाहे हम उन्हें किसी भी रूप में क्यों ना करते हों, वह या तो सकारात्मक या नकारात्मक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी को प्रभावित करता है। यह अलग बात है कि हम उसकी प्रभावकारिता को तुरंत अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। हमें उनका एहसास अपने में ना भी होता हो, लेकिन वे निश्चित रूप में व्यक्तियों, जगहों को प्रभावित करती हैं। यह इसीलिए क्योंकि हमारे कार्यों और बातों में एक अभूतपूर्व शक्ति का समावेश होता है। श्रोताओं, वर्ष के 15वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम ईश्वर के द्वारा सृजित सारी चीज़ों में व्याप्त शक्ति और उस शक्ति के कारण दुनिया में होने वाले परिवर्तनों को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपनी सचेतना में इस तथ्य पर चिंतन करें कि हम अपने जीवन में किन चीज़ों को देखते और पाते हैं जो दूसरों को प्रभावित करती हैं। क्या हमारे कार्य, बोली और वचन हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को, हमारे सुनने वालों को सकारात्मक रूप में अधिक प्रभावित करते या उन्हें नकारात्मकता का शिकार बनाते हैं? क्या हम अपने जीवन में व्याप्त ईश्वरीय दिव्य शक्तियों का एहसास करते हैं जिनके द्वारा ईश्वर अपने भले कार्यों को इस पृथ्वी पर पूरा करने की योजना बनाते हैं?
1: यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्द ही उग गए, लेकिन उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो, वह सुन ले।
0: श्रोताओ, ईश्वर के सुमधुर जीवनदायी वचन जो हमारे जीवन के अंतस्थल में बोए जाते हैं, हम उन वचनों को अपने हृदय रूपी उपजाऊ भूमि में ग्रहण करें और उसे संजोकर यत्न से रख सकें, जिससे वे प्रभावकारी ढंग से ईश्वरीय राज्य के लिए 30 गुना, 40 गुना और 100 गुना फल उत्पन्न कर सकें। नबी इसाईस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए ईश्वर के वचन की प्रभावकारिता को पानी और बर्फ के रूप में प्रस्तुत करता है, जो आकाश से उतरती और पृथ्वी को सींचकर हरियाली से भर देते हैं, जिससे भूमि बीज बोने वालों को फल और खाने वालों के लिए अनाज दे सके। नबी इसाईस कहते हैं, ईश्वर का वचन भी उसी भांति प्रभावकारी है जो मानव के हृदयों में ईश्वर की ओर से बोया जाता है, जिससे वह सारी मानवता के लिए मीठे और सुंदर फल उत्पन्न कर सके। श्रोताओं, जिस भांति हमारी धरती जल की प्यासी है, जिसके द्वारा वह अपनी उर्वरकता को प्रभावकारी बनाती और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खाने को अन्न उत्पन्न करती है, ठीक उसी भांति मानव का हृदय, जो किसी भी भूमि से 100 गुना अधिक उर्वरक है, अपने में फल उत्पन्न करने के योग्य तब होता है जब वह अपने में ईश्वर से आने वाले आशीषों और कृपाओं को ग्रहण करता है। और ऐसा तब होता है जब वह जीवनदायी ईश वचनों को अपने में धारण करता, उसे सहेज कर रखता और उसमें सदैव चिंतन करता है। ईश्वर के वचनों में इस भांति हम देखते हैं कि कि जीवन देने की अद्वितीय शक्ति भरी है। इसी कारण यीशु ख्रीस्त स्वयं अपने पिता से मिले वचनों को अपने सुनने वालों के हृदयों में बोने की चाह रखते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए मानवीय हृदय की उर्वरकता को व्यक्त करता है, जो उत्कंठा में अपने लिए ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करती है। हम सभी ईश्वर से मिलन की चाह रखते हैं। यह हर हृदय की अधीरता है जहां हम अपने ईश्वर से मिलन द्वारा अपने में दिव्य आनंद, प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं, जो हमें दूसरों के लिए प्रभावकारी बनाता है। मानव के हृदय में एक गहरी चाह व्याप्त है, जिसके फलस्वरूप हम उसे कई रूपों में फल उत्पन्न करने की उत्सुकता से भरा पाते हैं। यह उत्सुकता उनमें एक तरह से प्रसव वेदना उत्पन्न करती है। मानव के रूप में हम अपने गुणों, प्रतिभाओं और क्षमताओं को कई रूपों में व्यक्त करने की चाह रखते हैं, लेकिन बहुधा हम अपने में उन चीजों को अपने से बाहर नहीं ला सकते हैं जब तक हम अपने को उस ईश्वर से संयुक्त नहीं करते जिनके द्वारा सारी चीजें सृजित हुई और होती हैं। अतः हम सभी ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, उनसे हमारे मिलन की, जो हमारी चाहतों को फलहित करते और हमें अपनी वेदना से मुक्त करते हैं। ईश्वर से हमारा मेल हमारे जीवन से उन सारी चीजों को प्रस्फुटित करता है जिन्हें उत्पन्न करने हेतु हम में उत्सुकता और व्याकुलता होती है। ईश्वर के संग हमारा मेल आत्मा के विभिन्न कृपा दानों को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए और दूसरों के संग बांटने को अग्रसर करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने में दिव्य आनंद, शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। इस तथ्य को आज का सुसमाचार हमें और भी सरल रूप में समझने हेतु मदद करता है, जिसे हमने बोने वाले के दृष्टांत स्वरूप सुना। बोने वाले स्वयं यीशु ख्रीस्त हैं, जो अपनी ओर से हमारे लिए पहल करते हैं। हमारा जीवन उनकी ओर से हमारे लिए सर्वप्रथम एक पहल है। हमारे गुण और हमारी क्षमताएं हम में बोए गए वे बीज हैं, जो हमारे जीवन में फलहित होते और ईश्वर के राज्य हेतु फल उत्पन्न करते हैं। ईश्वर ने हमारे जीवन में उत्तम बीजों को बोया है। वे बीज हम में व्याप्त भूमि के अनुरूप उगते, बढ़ते और विकसित होते हुए फल उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के द्वारा बोए गए बीजों का फलहित होना भूमि पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम ईश्वर के वचन रूपी बीजों को किस मनोभाव से धारण करते हैं। यदि हमारे हृदय रूपी भूमि कठोर और पथरीली है तो वहाँ निश्चित ही बीज नहीं उगेंगे। यदि वहाँ कंटीली झाड़ियाँ हैं तो वे विकसित नहीं होंगी। यदि वे कम विश्वास रूपी भूमि में गिरे हैं तो निश्चित ही वे मुरझा जाएंगी, और यदि वे अच्छी भूमि में गिरती हैं तो वे निश्चित ही अधिक फल उत्पन्न करेंगी। केवल फल ही नहीं बल्कि मीठा और स्वादिष्ट फल, जिसकी चाह ईश्वर हम सबों से करते हैं। श्रोताओं, यीशु हमें अपने वचनों को सुनने का आह्वान करते हुए कहते हैं, जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। आइए हम अपने कानों को ईश वचनों के लिए खोलें, उन्हें सुने और उन्हें अपने जीवन में अमल करें। ईश वचनों के माध्यम हम अपने को मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के संग संयुक्त करते हुए उनके मनोभावों को धारण करें, जो हमें अपनी प्रेरिताई में प्रभावकारी होने को मदद करेगा।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। शनिवार 11 जुलाई को संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो के परम धर्म पीठीय उद्यान में स्थित बोर्गो लौदातो सी में रोम धर्म प्रांत के करीब 200 गरीबों और शरणार्थियों के साथ दोपहर का भोजन किया, जिसमें 35 बच्चे थे। उन 200 गरीबों में रोम के चेंत्रो एस्ताली जेस्विट रेफ्यूजी सर्विस JRS सेंटर से मदद पाने वाले 13 शरणार्थी भी थे। संत पापा के साथ भोजन नाम की इस पहल की शुरुआत आज सुबह सृष्टि की देखभाल के लिए बनी धर्म विधि से पौत्र मिस्सा समारोह मनाने से हुई, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा के लिए लौदातो सी केंद्र के महासचिव कार्डिनल फाबियो बागियो ने की। कार्डिनल फाबियो ने कहा कि बोर्गो लौदातो सी को यह प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है कि सृष्टि की देखभाल और मानव व्यक्ति की देखभाल एक ही मिशन है। उन्होंने इस पहल को सामाजिक परिधि पर रहने वाले लोगों के लिए संत पापा लियो 14वें के आउटरीच में एक और कदम के रूप में वर्णित किया। यह देखते हुए कि यह मुलाकात कलीसिया के उस आह्वान की पुष्टि करती है जहां मानवीय गरिमा सुनने, निकटता और आशा की मांग करती है। पवित्र मिस्सा के बाद स्वागत और नाश्ता दिया गया। अल्बानो के बार दुओमो ने नाश्ते की व्यवस्था की थी। इसके बाद उन्हें बोर्गो लौदातो सी का दर्शन कराया गया और बाद में संत पापा लियो 14वें ने भोजन से पहले सभी का स्वागत किया। इस पहल के आयोजकों कार्डिनल बाजो, रोम धर्म प्रांत के विकर जनरल कार्डिनल बाल्डो रेइना को सहृदय धन्यवाद दिया और भोजन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। इसके बाद सभी ने खुशी से भोजन का आनंद लिया। उधर वाटिकन में संत पापा लियो 14वें के साथ मीटिंग के बाद मोजाम्बिक के धर्माध्यक्षों का कहना है कि धर्माध्यक्ष ओसोरियो अफोंसो की हत्या कलीसिया और देश दोनों के लिए सच्चाई, सुलह और नए सिरे से शुरुआत का रास्ता बननी चाहिए। मोजाम्बिक के धर्माध्यक्षों ने कहा कि संत पापा लियो की नज़दीकी और एकजुटता न सिर्फ उनके लिखे और पब्लिक में कही गई बातों से बल्कि उनके साथ हुई मुलाकात से भी साफ दिखती है। धर्माध्यक्षों ने कहा कि हमारी मीटिंग के दौरान हमें एहसास हुआ कि मोजाम्बिक में हम जिस वास्तविकता में जी रहे हैं उसके बारे में संत पापा कितनी अच्छी जानकारी रखते हैं। 6 जून की सुबह धर्माध्यक्ष ओसोरियो की हत्या की खबर आने के बाद से ही मोजाम्बिक की कलीसिया इस दुखद घटना को बहुत दुख और चिंता के साथ जी रही है। धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने क्वेलिमेन धर्म प्रांत की स्थिति पर नजर

0: करीबी साथियों में से एक धर्मप्रांतीय चांसलर को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाल ही में एक और पुरोहित फादर सेल्सो को भी हिरासत में लिया गया था। धर्माध्यक्षों ने जोर देकर कहा कि बुनियादी सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। धर्माध्यक्ष ओसारियो को किसने मारा, किसने हत्या करने का आदेश दिया और इसका मकसद क्या था? उधर नाइजीरिया के राष्ट्रपति ऑफिस ने पिछले मई में हुए अपहरण हुए दर्जनों छात्रों को रिहा करा दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता बायो ओनागुना ने घोषणा की कि मई में दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया में हुए हमले के दौरान अपहरण हुए दर्जनों छात्रों को रिहा कर दिया गया है। बंदूकधारियों ने 15 मई को देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आयो राज्यों के 3 स्कूलों से 46 छात्रों और एक स्टाफ को अपहरण कर लिया था। खबर है कि कुछ अपहरणकर्ता मारे गए जबकि 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर कीव पर रूस के हमले की एक और रात, अब तक 11 लोग घायल हुए हैं जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन की राजधानी के मेयर विटाली और यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने यह खबर दी। एक बयान में कहा गया कि एक हफ्ते में तीसरी बार रूस ने कीव को निशाना बनाया है। सोलोमिस्की इलाके में एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई जिसे बाद में बुझा दिया गया। डर्निट्स्की इलाके में ट्रैफिक लाइट के एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम में आग लग गई। आसपास की रिहायशी इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। दनीप्रोव्स्की इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। बचाव कर्मी और दूसरी जरूरी सेवाएं कार्यरत हैं। इस बीच कीव की सेनाएं रूसी ऊर्जा सेक्टर के खिलाफ छापे तेज कर रही हैं। रिफाइनरों, डिपो और तेल टर्मिनलों को निशाना बना रही है ताकि क्रेमलिन के राजस्व के मुख्य स्रोत में से एक को कमजोर किया जा सके। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpedro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानवीय जीवन का हर कार्य, चाहे वह हमारे छोटे कार्यों में ही क्यों ना हो, अपने में सदैव प्रभावशाली होता है। हमारे दैनिक जीवन की चीज़ें, चाहे हम उन्हें किसी भी रूप में क्यों ना करते हों, वह या तो सकारात्मक या नकारात्मक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी को प्रभावित करता है। यह अलग बात है कि हम उसकी प्रभावकारिता को तुरंत अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। हमें उनका एहसास अपने में ना भी होता हो, लेकिन वे निश्चित रूप में व्यक्तियों, जगहों को प्रभावित करती हैं। यह इसीलिए क्योंकि हमारे कार्यों और बातों में एक अभूतपूर्व शक्ति का समावेश होता है। श्रोताओं, वर्ष के 15वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम ईश्वर के द्वारा सृजित सारी चीज़ों में व्याप्त शक्ति और उस शक्ति के कारण दुनिया में होने वाले परिवर्तनों को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपनी सचेतना में इस तथ्य पर चिंतन करें कि हम अपने जीवन में किन चीज़ों को देखते और पाते हैं जो दूसरों को प्रभावित करती हैं। क्या हमारे कार्य, बोली और वचन हमारे इर्द गिर्द रहने वालों को, हमारे सुनने वालों को सकारात्मक रूप में अधिक प्रभावित करते या उन्हें नकारात्मकता का शिकार बनाते हैं? क्या हम अपने जीवन में व्याप्त ईश्वरीय दिव्य शक्तियों का एहसास करते हैं जिनके द्वारा ईश्वर अपने भले कार्यों को इस पृथ्वी पर पूरा करने की योजना बनाते हैं?
1: यीशु घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। वह दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें समझाने लगे। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, वे जल्द ही उग गए, लेकिन उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे और फल लाए, कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना। जिसके सुनने के कान हो, वह सुन ले।
0: श्रोताओं, ईश्वर के सुमधुर जीवनदायी वचन जो हमारे जीवन के अंतस्थल में बोए जाते हैं, हम उन वचनों को अपने हृदय रूपी उपजाऊ भूमि में ग्रहण करें और उसे संजोकर यत्न से रख सकें, जिससे वे प्रभावकारी ढंग से ईश्वरीय राज्य के लिए 30 गुना, 40 गुना और 100 गुना फल उत्पन्न कर सकें। नबी इसाइयास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए ईश्वर के वचन की प्रभावकारिता को पानी और बर्फ के रूप में प्रस्तुत करता है, जो आकाश से उतरते और पृथ्वी को सींचकर हरियाली से भर देते हैं, जिससे भूमि बीज बोने वालों को फल और खाने वालों के लिए अनाज दे सके। नबी इसाइयास कहते हैं, ईश्वर का वचन भी उसी भांति प्रभावकारी है जो मानव के हृदयों में ईश्वर की ओर से बोया जाता है, जिससे वह सारी मानवता के लिए मीठे और सुंदर फल उत्पन्न कर सके। श्रोताओं, जिस भांति हमारी धरती जल की प्यासी है, जिसके द्वारा वह अपनी उर्वरकता को प्रभावकारी बनाती और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खाने को अन्न उत्पन्न करती है, ठीक उसी भांति मानव का हृदय, जो किसी भी भूमि से 100 गुना अधिक उर्वरक है, अपने में फल उत्पन्न करने के योग्य तब होता है जब वह अपने में ईश्वर से आने वाले आशीषों और कृपाओं को ग्रहण करता है, और ऐसा तब होता है जब वह जीवनदायी ईश वचनों को अपने में धारण करता, उसे सहेज कर रखता और उसमें सदैव चिंतन करता है। ईश्वर के वचनों में इस भांति हम देखते हैं कि जीवन देने की अद्वितीय शक्ति भरी है। इसी कारण यीशु ख्रीस्त स्वयं अपने पिता से मिले वचनों को अपने सुनने वालों के हृदयों में बोने की चाह रखते हैं। श्रोताओं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए मानवीय हृदय की उर्वरकता को व्यक्त करता है, जो उत्कंठा में अपने लिए ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करती है। हम सभी ईश्वर से मिलन की चाह रखते हैं। यह हर हृदय की अधीरता है, जहां हम अपने ईश्वर से मिलन द्वारा अपने में दिव्य आनंद, प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं, जो हमें दूसरों के लिए प्रभावकारी बनाता है। मानव के हृदय में एक गहरी चाह व्याप्त है, जिसके फलस्वरूप हम उसे कई रूपों में फल उत्पन्न करने की उत्सुकता से भरा पाते हैं। यह उत्सुकता उनमें एक तरह से प्रसव वेदना उत्पन्न करती है। मानव के रूप में हम अपने गुणों, प्रतिभाओं और क्षमताओं को कई रूपों में व्यक्त करने की चाह रखते हैं, लेकिन बहुधा हम अपने में उन चीजों को अपने से बाहर नहीं ला सकते हैं जब तक हम अपने को उस ईश्वर से संयुक्त नहीं करते, जिनके द्वारा सारी चीजें सृजित हुई और होती हैं। अतः हम सभी ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं, उनसे हमारे मिलन की, जो हमारी चाहतों को फलहित करते और हमें अपनी वेदना से मुक्त करते हैं। ईश्वर से हमारा मेल हमारे जीवन से उन सारी चीजों को प्रस्फुटित करता है, जिन्हें उत्पन्न करने हेतु हम में उत्सुकता और व्याकुलता होती है। ईश्वर के संग हमारा मेल आत्मा के विभिन्न कृपा दानों को अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए और दूसरों के संग बांटने को अग्रसर करता है, जिसके फलस्वरूप हम अपने में दिव्य आनंद, शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। इस तथ्य को आज का सुसमाचार हमें और भी सरल रूप में समझने हेतु मदद करता है, जिसे हमने बोने वाले के दृष्टांत स्वरूप सुना। बोने वाले स्वयं यीशु ख्रीस्त हैं, जो अपनी ओर से हमारे लिए पहल करते हैं। हमारा जीवन उनकी ओर से हमारे लिए सर्वप्रथम एक पहल है। हमारे गुण और हमारी क्षमताएं हम में बोए गए वे बीज हैं, जो हमारे जीवन में फलहित होते और ईश्वर के राज्य हेतु फल उत्पन्न करते हैं। ईश्वर ने हमारे जीवन में उत्तम बीजों को बोया है। वे बीज हम में व्याप्त भूमि के अनुरूप उगते, बढ़ते और विकसित होते हुए फल उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के द्वारा बोए गए बीजों का फलहित होना भूमि पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम ईश्वर के वचन रूपी बीजों को किस मनोभाव से धारण करते हैं। यदि हमारे हृदय रूपी भूमि कठोर और पथरीली है, तो वहाँ निश्चित ही बीज नहीं उगेंगे। यदि वहाँ कंटीली झाड़ियाँ हैं, तो वे विकसित नहीं होंगी। यदि वे कम विश्वास रूपी भूमि में गिरे हैं, तो निश्चित ही वे मुरझा जाएंगी। और यदि वे अच्छी भूमि में गिरती हैं, तो वे निश्चित ही अधिक फल उत्पन्न करेंगी। केवल फल ही नहीं, बल्कि मीठा और स्वादिष्ट फल, जिसकी चाह ईश्वर हम सबों से करते हैं। श्रोताओं, यीशु हमें अपने वचनों को सुनने का आह्वान करते हुए कहते हैं, जिसके सुनने के कान हों, वह सुन ले। आइए हम अपने कानों को ईश वचनों के लिए खोलें, उन्हें सुने और उन्हें अपने जीवन में अमल करें। ईश वचनों के माध्यम हम अपने को मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के संग संयुक्त करते हुए उनके मनोभावों को धारण करें, जो हमें अपनी प्रेरिताई में प्रभावकारी होने को मदद करेगा।

0: वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। शनिवार 11 जुलाई को संत पापा लियो 14वें कास्टेल गंडोल्फो के परम धर्म पीठीय उद्यान में स्थित बोर्गो लौदातो सी में रोम धर्म प्रांत के करीब 200 गरीबों और शरणार्थियों के साथ दोपहर का भोजन किया, जिसमें 35 बच्चे थे। उन 200 गरीबों में रोम के चेंत्रो एस्ताली जेस्विट रेफ्यूजी सर्विस JRS सेंटर से मदद पाने वाले 13 शरणार्थी भी थे। संत पापा के साथ भोजन नाम की इस पहल की शुरुआत आज सुबह सृष्टि की देखभाल के लिए बनी धर्म विधि से पौत्र मिस्सा समारोह मनाने से हुई, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा के लिए लौदातो सी केंद्र के महासचिव कार्डिनल फाबियो बागियो ने की। कार्डिनल फाबियो ने कहा कि बोर्गो लौदातो सी को यह प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है कि सृष्टि की देखभाल और मानव व्यक्ति की देखभाल एक ही मिशन है। उन्होंने इस पहल को सामाजिक परिधि पर रहने वाले लोगों के लिए संत पापा लियो 14वें के आउटरीच में एक और कदम के रूप में वर्णित किया। यह देखते हुए कि यह मुलाकात कलीसिया के उस आह्वान की पुष्टि करती है जहां मानवीय गरिमा सुनने, निकटता और आशा की मांग करती है। पवित्र मिस्सा के बाद स्वागत और नाश्ता दिया गया। अल्बानो के बार दुओमो ने नाश्ते की व्यवस्था की थी। इसके बाद उन्हें बोर्गो लौदातो सी का दर्शन कराया गया और बाद में संत पापा लियो 14वें ने भोजन से पहले सभी का स्वागत किया। इस पहल के आयोजकों कार्डिनल बाजो, रोम धर्म प्रांत के विकर जनरल कार्डिनल बाल्डो रेइना को सहृदय धन्यवाद दिया और भोजन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। इसके बाद सभी ने खुशी से भोजन का आनंद लिया। उधर वाटिकन में संत पापा लियो 14वें के साथ मीटिंग के बाद मोजाम्बिक के धर्माध्यक्षों का कहना है कि धर्माध्यक्ष ओसोरियो अफोंसो की हत्या कलीसिया और देश दोनों के लिए सच्चाई, सुलह और नए सिरे से शुरुआत का रास्ता बननी चाहिए। मोजाम्बिक के धर्माध्यक्षों ने कहा कि संत पापा लियो की नज़दीकी और एकजुटता न सिर्फ उनके लिखे और पब्लिक में कही गई बातों से बल्कि उनके साथ हुई मुलाकात से भी साफ दिखती है। धर्माध्यक्षों ने कहा कि हमारी मीटिंग के दौरान हमें एहसास हुआ कि मोजाम्बिक में हम जिस वास्तविकता में जी रहे हैं उसके बारे में संत पापा कितनी अच्छी जानकारी रखते हैं। 6 जून की सुबह धर्माध्यक्ष ओसोरियो की हत्या की खबर आने के बाद से ही मोजाम्बिक की कलीसिया इस दुखद घटना को बहुत दुख और चिंता के साथ जी रही है। धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने क्वेलिमेन धर्म प्रांत की स्थिति पर नजर रखने के लिए आल्टो मोलोकुए के धर्माध्यक्ष एस्टेवाओ एंजेलो फेर्नांडो को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष इग्नासियो ने कहा कि आधिकारिक तौर पर धर्माध्यक्ष की हत्या के बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक की गई एकमात्र जानकारी यह है कि धर्माध्यक्ष को एक हाई कैलिबर बंदूक से गोली मारी गई थी। यह कोई आम पिस्तौल नहीं है बल्कि युद्ध का हथियार है। उन्होंने बताया कि हत्या के बाद धर्माध्यक्ष ओसोरियो के सबसे करीबी साथियों में से एक धर्मप्रांतीय चांसलर को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाल ही में एक और पुरोहित फादर सेल्सो को भी हिरासत में लिया गया था। धर्माध्यक्षों ने जोर देकर कहा कि बुनियादी सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। धर्माध्यक्ष ओसोरियो को किसने मारा, किसने हत्या करने का आदेश दिया और इसका मकसद क्या था। उधर नाइजीरिया के राष्ट्रपति ऑफिस ने पिछले मई में हुए अपहरण हुए दर्जनों छात्रों को रिहा करा दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता बायो ओनागुना ने घोषणा की कि मई में दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया में हुए हमले के दौरान अपहरण हुए दर्जनों छात्रों को रिहा कर दिया गया है। बंदूकधारियों ने 15 मई को देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आयो राज्यों के 3 स्कूलों से 46 छात्रों और एक स्टाफ को अपहरण कर लिया था। खबर है कि कुछ अपहरणकर्ता मारे गए जबकि 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर कीव पर रूस के हमले की एक और रात, अब तक 11 लोग घायल हुए हैं जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। यूक्रेन की राजधानी के मेयर विटाली और यूक्रेन की आपातकालीन सेवा ने यह खबर दी। एक बयान में कहा गया कि एक हफ्ते में तीसरी बार रूस ने कीव को निशाना बनाया है। सोलोमिस्की इलाके में एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। डर्निट्स्की इलाके में ट्रैफिक लाइट के एक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल रूम में आग लग गई। आसपास की रिहायशी इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। दनीप्रोवस्की इलाके में एक गोदाम में आग लग गई। बचाव कर्मी और दूसरी जरूरी सेवाएं कार्यरत हैं। इस बीच कीव की सेनाएं रूसी ऊर्जा सेक्टर के खिलाफ छापे तेज कर रही हैं। रिफाइनरों, डिपो और तेल टर्मिनलों को निशाना बना रही है, ताकि क्रेमलिन के राजस्व के मुख्य स्रोत में से एक को कमजोर किया जा सके। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.ovolodisantpetro.va पर जरूर जाएं।